0: परम मोहे लुभानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैम गुर प्रसाद। जे सौ चंदा उगवहें सूरज चढ़ हैं हजार इते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। वडी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासो सरवन किया। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करिए निमाणे जे हो के गुरु चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझ

अपने मन नूं समझाओ, कोई माड़ा कर्म करके खुश ना होया करिए, कोई बुरा कर्म करके खुश ना होया करिए, चोरियां हेरा फेरियां ठगियां करके कोई खुश ना होया करिए, भी किहड़ा मैनू किसी ने देखिया, कौन मैनू सजा देगा, मैनू किहड़ा किसी ने देखिया। खुश ना होया करिए, सगो रोइए कि किसी ने देखिया नहीं देखिया, पर उन्हें देख लिया जिन्हें जिंदगी दिती है, जिन्हें जीवन दिता है, वो देख रहा है, अंदर देख रहा, वो बैठा, उन्हें एक ऐसा चित्र गुप्त रूप में बिठा दिता, गुप्त जिहड़ा सानू नहीं पता, वो देख रहा है, वो हर वेले नज़र रख रहा है साढ़े अंदर, जिन्हों चित्र गुप्त कहने हैं ना, वो चित्र ही गुप्त है, अंदर वो चित्र ही गुप्त है जिहड़ा सानू पता ही नहीं है, पर वो हर नज़र हर वेले है उहदी, हर वेले हर टाइम मेरे मन च की चल रहा है, किहड़ा फुरना, क्योंकि कर्म मन ने बनाउणा है। बीज ते डिपेंड करदा है भी फल किहड़ा लगेगा, ये बीज देख के ही पता लगता ना भी फल किहड़ा लगेगा, ये बीज तो है मन, ते मन विच जो होएगा उही फुरने बनने हैं, उही फल लगने हैं, ते वो जिहड़ा अंदर बैठा होया है ना, वो मेरे मन दे फुरने भी पढ़ लैंदा है, मैं मन च की कह रहा किसी नूं, की सोच रहा, किदे बारे माड़ा कर रहा, किदे बारे चंगा सोच रहा, वो प्लैनिंग तो पहला मन च ही हुंदी है, वो मन की खबर रखण वाला है, वो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की तीर पछाण, बस आ गल बंदे नूं समझ नहीं आ रही। महाराज जी कहिंदे तू लुक के छुप के जिन्ने मर्जी कर्म करी जा, पर उहदे तों कुछ नहीं छुपिया, कुछ नहीं उहदे तों लुकिया, ये तेरा भुलेखा है, तू बड़े वड्डे एक भुलेखे की जिंदगी जी रहा है, तू वल वंच, तू बड़े वल छल करदा, लूक कर है, लुक के छुप के करदा, सब जाने जानी राम, वो जानी जान जड़ा ना, वो सब जानदा है कि ये पाप किने कमाया ते किने नहीं। हाँ, दुनिया तो बच जाएंगे, आप दुनिया की कोर्ट कचहरी चो बच जाएंगे, सजा तो बच जाएंगे, पर उत्थे नहीं बचना किसी ने, उत्थे तो लेखा देना पैना है, उहदा हिसाब किताब तो क्लीयर है, उहदे च कोई हेरा फेरी नहीं है। इसलिए वो जाने जानी राम, लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया। महाराज जी

पुरख अपने पंथ वे सदा सहाई दार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं

पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनी, यात्रावां सफल करनी।

दोहरा गया भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने हो जो प्रभु।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, हे ओ जन्म तुम्हारे लिखे,

फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहीं जपहीं बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावें मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उबाही जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सत्यार मिंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी। जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदया विछोड़या आ मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल, वियोग मिल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़।

पग नहीं चल ले। हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैनों तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मेरा साध संगत भाजे केवल नाम। श्रृंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया,

नाथ दय लिहो उबारी सर्व ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दय लिहो बारी सर्व ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक नाम मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहे हम एक ना जान्यों।

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या ना ही हर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या ना ही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवैया कर शान सुख मन वसिया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैसक होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मंदामणि महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पंचाए
तिसका हुए उदारो एह बस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसर हो। श्लोक महला पंजमा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया।

सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद

अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नाओ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नाओ ना जाने मेरा।

0: जुगो जुग अटल, दीन अर दुनी दे मालक, सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है, आओ गुरु प्यार वालेओ, जिथे गुरु के कीर्तनिया पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच श्रवण करदे आं, बाणी दा रस, बाणी दा आनंद माण रहे सां। जो लड़ीवार गुरु इतिहास दीआं विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों श्रवण करदियां हो, उन्हां चल रही लड़ीवार गुरु इतिहास दीआं विचारां दे नाल सांझ पाईए। पिछलेरे दीवानां दे अंदर आप संगत ने इत्थों तक इतिहास सतगुरु जी का श्रवण कीता सी कि सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ते उन्हां दे नाल जिहड़े सेवक ने उन्हां ने मिल के बजरूड़ जिहड़ा पिंड है उस पिंड दे उत्ते जित हासिल कीती, और सभनां दे मन अंदर एक डर एक भय जिहड़ा है वह गुरु कलगीधर साहिब जी दे प्रति पैदा होया। वह डर पैदा करन दा लाभ यह होया भी हुण कोई भी नगर ते कोई भी पिंड उहदे विच भावें कोई गुरु घर दे नाल प्रेम करन वाला रहिंदा है ते भावें गुरु घर दे नाल विरोध करन वाला, उन्हां सारयां दे मन विच डर यह है भी जे असीं गुरु की संगत दा राह रोकिया जां गुरु की संगत दे कोलों कार भेट असीं लुट्टी ते उहदा नतीजा साडे लई चंगा नहीं होएगा। इस करके जिहड़ा गुरु कलगीधर पातशाह वल्लों उह सारा अपना तेज प्रताप प्रगट कीता गया ना, उहदे करके मन विच डर पैदा होया भी जे संगत दा राह रोकांगे ते साडा नगर भी उजड़ेगा, जे संगत कोलों कार भेटा असीं खोवांगे कार भेटा भी वापस करनी पैनी ते अपना आपा भी असीं उजाड़ के बैठ जाणा। जिस करके एक मन दे अंदर डर जिहड़ा है वह पैदा होया सभनां दे। इस तरीके धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जदों सिखां संगतां दे उत्ते बख्शिशां वरताउंदे ने ते सारियां संगतां सिख बड़े प्रेम प्यार दे नाल सतगुरु पातशाह दे दर ते चल के आउंदे, मालक पातशाह जी फिर उन्हां सभनां नूं उपदेश दिंदे आ, सिख्या यही दिंदे ने भी शस्त्रधारी होवो, शस्त्रधारी हो के रहोंगे ते तुहाडे वल कोई भी अख चुक के वेख नहीं सकदा। इस तरह गुरु साहब जी प्रेरणा दे रहे ने, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਗਰੇ ਦੂਣ ਤਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਜਬਰੀ ਕਰਨ ਹਾਥ ਉਠਾਇਓ।
0: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਨੀ ਰਚੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜਰੂੜ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗੜ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਜਦੋਂ

पंचदूत तुद वस कीते काल कंठ कमार तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कैलाज कह नानक तै सुख होआ तत कर अनहद बात अनंद सुनो बड़ भागी।

था। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर दंडोत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर साधना जानिया तिना तरहु मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल हैं चुवह दुख पाव हैं जमकाल सहस डंडा हे। हर जन हर हर

सवैये महल्ले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अबनासी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी सतगुर चरण कंवल रिद तारंग गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग गुर रामदास कर कियो परगासा।

हर जनक उपायो, शब्द गुरु पर कासेओ, हर रसन बसायो, गुरु नानक आद अंगद, गुरु नानक अंगद अमरला, अमर लाग उत्तम पद पायो, गुर अर्जुन कर गुर रामदास, भगत उतर आयो, बड पागी उन मान्यो, रिद शब्द बसायो, मन मानक संतोखियो, गुर नाम दृढ़ायो, अगम अग

आयो जनक राज बरताया सतजुग आलीना गुरु शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुरु नानक सच नीव साज सतगुर संगलीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीणा।

अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र मा शिव जोग करी सुन वेद ब्रंच विचार हो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री

जग ओ न जाए महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गे मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मद चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो परता श्रीदे गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।